गंभीर रंग संती आसा मरायू पर गया मंगी बुरे हाथी की तसम हुआ डंगर इतू दिया सुवारा मरका ओ मरकत दर सुवारा गंभीर रंग गीतर जुगा मंगी कुछ पर समा रगम रगु यंग पर मैं पर गलोरा डंगर इतू दिया सुवारा मरका दिया का की तांगन